0: That's right.
1: What's on the opening of the year? A letter! A letter! Oh my God! Oh my God!
2: What's your model?
1: ओए पहाड़ में गया मॉडल पहले ये बताइए कि आपके स्वामी जी नहीं आए
2: स्वामी
1: ओ स्वामी मीन हस्बैंड
2: हस्बैंड क्रैक क्लैरिटी
1: ओए पंटी